0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल, at all protected.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
4: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
7: Seven stations. One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
8: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Leica Gold par.

तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों मैं कह न कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खा। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवा।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

मन कोय। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से ती सनबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिब तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह सहपत साहिब नानक रहंड जाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विपूत।

जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राजमाल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: Offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call Sona Tours now on 0208 951 0111.
3: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है.
2: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.

0: This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: The wait is over. Prakhyat Spice Village Hawe Haro ma khuli gayu chhe. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor maathi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus maathi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe laavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo, one

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: लाइका कूल, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन।

0: one performer,
1: countless personalities,
0: a whole universe of entertainment.
1: Sunil Grover, live UK tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
1: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
1: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Southall Travel.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there.
0: Southall Travel, at all protected.
5: Hamari raksha hai wo.
6: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
7: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai, un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
6: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
8: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. For unka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
12: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: मैं हूँ नीसा नासिर, लाइक अ गुड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.

0: Greater London. This is Kajal on Breakfast.
1: दीवाना.
2: एक दीवाना शहर में.
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.
2: दो दीवाने शहर में.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 0208574-8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: माया भाई नी मौजवाण मा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स यूके प्रेजेंट्स भव्य डायरो, माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे
4: 27 सितंबर 2026 ना रोज। वेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइसलीप, HA40JS। टिकट्स 30 and £20। लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड। बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0777-287-509।
5: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
6: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
7: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
11: We're finally going home for the wedding.
12: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
13: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
12: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
13: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
12: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
13: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
14: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: Khakra Crunch Bhakri Munch. Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
16: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
15: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
17: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: Across Greater London, this is Kajal on Breakfast.

0: is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from HeraldPlastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस ने एक अनोखी स्टोरी
5: सांभर एक काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए इतने
4: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
6: तू गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछड़ वालों ब्रेक मारे छे यार
4: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज

0: यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।
1: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।

0: book Japan tour now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
2: हमारी रक्षक है वो.
3: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
4: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
3: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
5: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: 0730098823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: सदैव मर्यादा पुरुषोत्तमं लोकनाथं श्रीराम श्रीराम.
10: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
11: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: ना के और सुनो हाँ, एक परी थी।
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

के तू, अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

गुड मॉर्निंग। मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है संगीत प्रेमियों का।

0: शुक्रवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 25 तारीख एक और मनोरंजन प्रोग्राम, एक और संगीत का सुहाना सफर लेकर आपका दोस्त रवि शर्मा स्टूडियो में हाजिर है। आप सब की ओर से भाई धन्यवाद कह दें काजल को, शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। और उससे पहले लीजिए साहब 3 घंटे का ये कार्यक्रम लेकर मैं सफर शुरू करता हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आशा है आज का दिन और आज जो शुरू हो रहा है वीकेंड वो आपके लिए बहुत ही सुहाना और मंगलमय रहेगा। जीवन की ये डोर बंधी है सपनों से, आशाओं से, और अंधियारों में नूर खिलेगा, धूप खिलेगी छांव से। शीश नवाओ, तिलक करो अब उन राहों की मिट्टी से, जिन राहों से कासिद लाया प्रीत संदेशा गांव से। कैसी वो मनहूस घड़ी थी, हम बंटवारा कर बैठे, बहने बिछड़ी भाइयों से, कुछ बच्चे छूटे माओ से। शायद ये पुरवाइयां उनकी जुल्फे चूम के आई हैं, सावन रुत में महक सलोनी आई आज हवाओं से। भीगा बदन और उस पर भीगा भीगा मौसम, उफ तौबा, मोती बरसे जुल्फों से और अमृत मस्त घटाओं से। नई जवानी अपनी राहें अपने आप निकालेंगी, दुनिया भर बच के रहना चढ़े हुए दरियाओं से।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Non-stop classics. Classics. Leica Gold.
0: जीवन की ये डोर बंधी है सपनों से, आशाओं से, अंधियारों से नूर खिलेगा, धूप खिलेगी छांव से।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: बंद कर रेडियो।
2: नहीं करू कीधु ने।
1: अरे कौचू बंद कर, मैं टीवी जोऊ छे।
2: तमारे जे जोऊ होते जुओ, समझा ने। जहाँ सुधी रवि शर्मा ने न सांभळू ने त्यां सुधी रेडियो बंद नहीं करू, नहीं करू, नहीं करू।
1: एटले
2: शु? वार छोड़ीस, घर छोड़ीस, पर रवि शर्मा ने नहीं छोड़ू। ना, एटले रेडियो मां रवि शर्मा ने सांभळवानू नहीं छोड़ू।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो भाई। कुछ लोग जो है कुछ बातें घर पे नहीं बोल पाते हैं तो यहाँ बड़ा से निकाल लेते हैं, उन सब की तरफ से ये गीत। बाकी आप समझदार हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ काम की बातें कर लें भाई, ये तो हंसने हंसाने की बहाने हैं भाई। काम की बात ये कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स आर लाइक आर रेडियो नेटवर्क। इट टेक्स प्लेस एट ओवो वेम्बली अरिना ऑन संडे 27 सेप्टेंबर। डोर्स ओपन 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 to 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस स्टार्ट्स एट 6:15 to 9:30 PM। टिकेट्स www.diwalistory.com। ये हो गया संदेश, और अब भाई समाचारों की ओर रुख करते हैं। तैयार हैं आप खबरें सुनने के लिए?
3: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
2: और भाई खबरों में यहाँ लोकल कहें ब्रिटेन की जो खबर है वो तो चर्चा में है। एंडी बर्नहम से कहा जा रहा है कि साहब बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ हमारी गलियाँ भी सुरक्षित होनी चाहिए, और आप अगले हफ्ते होने वाली जो लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस है ना उसमें आप इमिग्रेशन का चर्चा ज़रूर कीजिएगा, उस पर व्याख्या ज़रूर कीजिएगा। ये कहना है एंडी बर्नहम को, कह रही हैं उन्हीं की पार्टी की एक सीनियर पीयर हैरियट हरमन। और क्या क्या हो रहा है ये सुनते हैं आज के प्रमुख समाचार। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खबरें सुनिए। पहले भारत की बात करें भाई। भारत में चुनाव कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के बहुत शोर मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कई आरोप, कई भाई कहानियां उनके संदर्भ में, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी भी अब डिमांड करने लगे हैं। सहयोगी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो चीफ हैं चिराग पासवान। इस नौजवान नेता ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, और ऐसे में अगर कमीशन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये जिम्मेदारी भी उसकी और ख़ास तौर पर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है कि वो अपनी बातों को मजबूती से रखें। उन्होंने आगे कहा कि अपोजिशन क्या कहती है, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर विपक्ष वाले आरोप नहीं लगाएंगे तो आप अपनी पॉलिटिक्स कैसे चलाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी या किसी भी अपोजिशन लीडर को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जनता के मन में किसी प्रकार का कोई शक ना हो, इसलिए ये निश्चित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। बिहार के जमुई में एक सेक्सुअल वॉयलेंस का शिकार हुई लड़की के परिवार के साथ फोटो लगाने पर राज्य के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा है कि नासमझ अनाड़ी कानून विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री खुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट भाई ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ एक सीरियस कानून है। जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता के परिजनों के संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी करके पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे या नाबालिग की पहचान को गुप्त रखना कानूनन जरूरी है। काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर कल यानी शनिवार तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो CJP 2 अक्टूबर से पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू करेगी, प्रदर्शन शुरू कर देगी। उन्होंने लिखा कि इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का हम संकल्प ले रहे हैं। जापान में चल रही एशियन गेम्स में भारत की तरफ से कमल जीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम के 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हरा दिया है। ये महिला हॉकी टीम की लगातार चौथी जीत है। फिलहाल भारत एशियन गेम्स में जो मेडल की लिस्ट उसमें 19 पदकों के साथ 12वें पायदान पर है। इसमें 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। उत्तर पूर्वी राज्य भारत के इस स्टेट सिक्किम में भारी बारिश और ग्यारशिंग जिले के रिम्बी गांव में भूस्खलन हुआ है। धरती का खिसकना, यहां कई घर, सरकारी क्वार्टर और अन्य प्रॉपर्टीज जो है वो बह गई है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामंग ने फेसबुक पर लिखा है कि कल रात हुए भीषण भूस्खलन के बाद रिम्बी ग्यालशिंग जिले की स्थिति से मैं बेहद दुखी हूं और चिंतित हूं। हालात गंभीर बने हुए हैं और लोगों की सिक्योरिटी और हित हमारी सर्वोच्च प्रायोरिटी है। इंटरनेशनल खबरों में यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच शुरू होते ही कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव सभागार से उठ करके चले गए। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस महासभा में इस घटना के बाद अपने एड्रेस के अपने संबोधन की शुरुआत बड़ी तीखी टिप्पणी से की। शुरू में ही उन्होंने कहा, अगर कोई नैतिक रूप से कायर व्यक्ति अभी तक इस सभागार में बैठा है और बाहर नहीं गया है तो बेशक उठ के चले जाए। नेतन्याहू ने कहा कि जो देश निजी तौर पर इसराइल का बचाव करते हैं उन्हीं देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के सभागार से बाहर निकल गए। उन्होंने इसे हैरान करने वाला पाखंड यानी माइंड ब्लोइंग हिपोक्रेसी बताया। यूनाइटेड नेशंस की महासभा में नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने भारत को शुक्रिया कहा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालन शाह ने भारत और चीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीते दिनों नेपाल में आई बाढ़ के दौरान मदद के लिए दोनों मुल्कों के प्रति खास आभार जताया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वें सत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि नेपाल, भारत और चीन की लीडरशिप में हिमालयी जलवायु तंत्र स्थापित किया जाए, एक संस्था बनाई जाए। बालन शाह ने कहा कि जब कोई आपदा आए तो हम सीमाओं के पार राहत और सहायता के लिए तालमेल स्थापित करें, ऐसा होना चाहिए। आपको याद दिला दें कि नेपाल में पिछले महीने आई बाढ़ में करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 6,000 लोग लापता हैं। इसराइल के खिलाफ जनमत को प्रभावित करने वाले नेतन्याहू के इल्जामों को कतर ने खारिज कर दिया है। कतर के

0: न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूएन की जनरल असेंबली के दौरान हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की है। शहबाज शरीफ ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री रहमान और मैंने व्यापार, इन्वेस्टमेंट, संपर्क, शिक्षा, पर्यटन और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों के फील्ड में पाकिस्तान बांग्लादेश दो तरफा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। उन्होंने आगे लिखा कि साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देशों के बीच करीबी तालमेल बनाए रखने पर सहमति बनी है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और ये कार्यक्रम लेकर मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो 11 बजे की खबरों के बाद का क्रम है, ये है आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और आज के विचार के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल जी, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में जो तीर्थराज प्रयाग है वहां से आज का चिंतन भिजवा रहे हैं। चिंतन भिजवाने के बाद में लगातार वो सुन रहे कि कब उनका चिंतन आएगा, संदेश भेज रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं। तो पंडित जी, सर आंखों पर आपका चिंतन, लेकिन इस प्रकार के चिंतन आप नवरात्रों में भी भिजवाइए। उन दिनों रामलीलाएं होती हैं हिंदुस्तान में और रामत्व का, राम जी के जीवन चरित का प्रचार प्रसार रामलीलाओं के माध्यम से होता है, क्योंकि इतिहास में, स्कूलों में, हमारे पाठ्यक्रम में राम कथा या फिर महाभारत ये लागू नहीं किए गए। यहां तक कि हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा चर्चा पांडवों का नहीं हुआ। और दिल्ली में जगह जगह हमें जो सड़कों के नाम, बिल्डिंगों के नाम जो मिलते हैं भाई, वहां पर शाहजहां रोड, लोधी रोड, अकबर रोड, तुगलक मार्ग, ये तो मिले, लेकिन शिकायत करते हैं पंडित जी के युधिष्ठर मार्ग, अर्जुन रोड, इन्होंने दिल्ली बसाई थी, हस्तिनापुर नाम दिया था, लेकिन इनका नाम, पांडवों का एक पुराना किला मिलता है टूटा फूटा, अब उसे बनाया है सैलानियों के लिए आकर्षक। लेकिन कहने की बात यह है कि इतिहास में कुछ ऐसी बातें जो दर्ज होनी चाहिए और बताई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए, और उसमें रामायण से एक प्रसंग का जिक्र करते हैं पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल के। भारत की जो परंपरा है, भारत की जो मर्यादाएं हैं, जो संस्कृति है, वो त्याग की है। भाई भाई के बीच जो संबंध भारत में मिलते हैं, उनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, और वो जिक्र करते हैं राम और भरत का। अब पाठ्यक्रम में तो रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन रामलीला के माध्यम से हमें पता चला, हमने सीखा, देखा, पढ़ा, सुना। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, राज्याभिषेक यानी राज तिलक, यानी उनको राजा बनाया जाना था। एक दिन पहले सारी तैयारियां हो गई थी, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था, सभी राजाओं को, महाराजाओं को, राज्य अध्यक्षों को संदेश भेजे जा चुके थे, और राज्य भर से, पड़ोसी राज्यों से भी लोग ये राज्याभिषेक, ये राज तिलक की कार्रवाई देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे अयोध्या में। लेकिन एक रात पहले ही सारी परिस्थितियां बदल गई, बदल गया सारा कार्यक्रम। राम की सौतेली माता जी यानी भरत की मां ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे, और जब उन्हें यह समाचार मिला तो बहुत दुखी हुए। क्या समाचार? कि राम को राज्याभिषेक करने की बजाय, राम को राज्य देने की बजाय, भरत की मां ने राज्य भरत के लिए मांग लिया। आपने वचन दिया है महाराज, 2 वचन दिए थे मुझे, एक में मैं भरत के लिए राज्य मांगती हूं, राम को नहीं, भरत को राजा बनाइए। राम के पिता श्री दशरथ जी मान गए, कोई बात नहीं, राम कभी माइंड नहीं करेंगे, अपने भाई को राजा बनाकर बहुत खुश होंगे। दूसरे वचन में क्या चाहिए? तो भरत की मां कैकेयी ने कहा कि दूसरे वचन में राम के लिए वनवासी के रूप में 14 वर्ष का वनवास, एक सन्यासी के रूप में, एक त्यागी के रूप में,
कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास, राजमुकुट कुंडल राजवस्त्र सब कुछ त्याग कर वनवास में 14 बरस के लिए। दशरथ सुनकर के ही टूट गए। भरत के लिए राज्य ठीक है, लेकिन राम के लिए वनवास? मैं चाहती हूं कि भरत को राज्य करते हुए किसी तरह की भी कोई दखलंदाजी ना मिले, कोई हस्तक्षेप ना करे उनके राजकाज में। दशरथ मिन्नतें करने लगे, मैंने वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तुम्हारा पहला वचन सर आंखों पर स्वीकार करता हूं, दूसरे वचन पर फिर विचार कर लो। ठीक है, कह दो रघुकुल की रीत ऐसी नहीं है, वचन निभाना जरूरी नहीं है। राम को पता लगा तो पिता के चरणों में शीश नवाकर वन के लिए रवाना हो गए, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भी। अब त्याग की बात वहां आती है। राम वनवास चले गए पर भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। अब भारत में ऐसे उदाहरण भी आपको मिलते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई का सर काट कर अपने पिता के सामने पेश किया कि राजा मैं बनूंगा, ये नहीं, हालांकि वो बड़ा था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई का सर काट करके अपने पिता के सामने पेश किया और फिर पिता को एक कोठरी में कैद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। ये त्याग की नहीं भोग की परंपरा है। राम की परंपरा त्याग की है। पिता की आज्ञा को सर आंखों पर रख करके वनवासी का भेष बनाकर वन में चले गए। अब भरत ने क्या किया ये देखने वाली बात है। त्याग यहां आता है सामने, क्या राज्य स्वीकार किया? नहीं, ठोकर मार दी। राजा राम है, वही राजगद्दी पर बैठेंगे। तुरंत अपने बड़े भाई की खोज में वन को निकल पड़े। और बहन भाइयों, 14 बरस तक राम जब तक वन में रहे, भरत एक दिन भी महल में नहीं रहे, क्योंकि राम ने जिम्मेदारी दी, राज का चलाओ, अगर मुझे राजा मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ मुझे वनवासी रहने दो, तुम राज चलाओ। राम की खड़ाव लेकर भरत लौटे, सिंहासन पर अयोध्या में खड़ाव रख दी, यानी चरण पादुका जो पहनते थे लकड़ी की खड़ाव, और खुद राजधानी से बाहर एक कुटिया बनाकर जंगल जैसे माहौल में जमीन पर सोते थे, वहीं पर सारी फाइलें आती, राजकाज वहीं से चलाते भरत और शत्रुघ्न। और बहन भाइयों, भरत ने एक दिन भी राजकीय जीवन नहीं जिया, वनवासी का जीवन जिया। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि भाई की खोज में, राज्य को ठोकर मारकर भाई की तलाश में जब वो वनों में गए, कैसे उन्होंने पशु पक्षियों को, वनस्पतियों को, पेड़ों को, दरख्तों को पुकारा, मुझे राम का पता बता दो, कहाँ है मेरे बड़े भाई, किस तरह से वो तड़प और वो लड़क, वो इच्छा, वो त्याग। प्रणाम करते हैं हम ऐसी भारतीय परंपरा को।

0: बोलो हे जमी, बोलो आसमान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान। प्रकृति से पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, नदियों से, पर्वतों से, बता दो राम का ठिकाना, मुझे राम जी को वापस लेकर है जाना। अयोध्या की राजगद्दी पर है बैठाना। बहन भाइयों, ये है त्याग। राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया, इधर राम ठोकर मार के गए हैं, उधर भरत ठोकर मार रहे हैं, नहीं चाहिए। और एक तरफ ऐसा इतिहास है, कंस ने भी अपने पिता को कैद में डाल दिया था मथुरा के राज्य के लिए, पर वो हमारे आदर्श नहीं, हमारे आदर्श राम है, हम उन्हें फॉलो करते हैं। जब भरत को मिल गए राम, तो कहा भाई वापस चलिए, भैया राजा आप हैं, बड़े आप हैं, राज्याभिषेक आपका ही होगा। राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है। डोंट फॉरगेट, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पिताजी ने वचन दिया था, उनका वचन मैं निभा रहा हूं। माता श्री ने आज्ञा की, तो भाई पिता की आज्ञा, माता की इच्छा सर आंखों पर। घर भाइयों, पूरी रामायण यानी रामचरित मानस आदर्शों का संग्रह है, जो बताता है कि पिता का पुत्र के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। पंडित प्रहलाद नारायण शुक्ल जी गंगा किनारे, वहां जो पुराना इलाहाबाद था, प्रयागराज में आप विराजमान है, और वहां से चिंतन भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में भी आपसे ऐसे चिंतन प्राप्त होंगे जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई रामकथा से ही जुड़ा हुआ एक और चिंतन हमें भिजवाया है हमारे बैसन साहब ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। गीत के साथ जोड़कर भाई हम कभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो गीत आपने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में था, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म आई थिंक चक्रधारी। बोलो हे जमी, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान? हमारे भगवान भी खोए हुए हैं सुख, इसीलिए दूर है हमसे। जब हम उनको वापस ढूंढ कर अपने हृदय में आसन पर बैठाएंगे, राजगद्दी सौंपेंगे, यानी नियंत्रण उनको देंगे, उनके अनुशासन में रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। अयोध्या में दिवाली, यानी हमारे भीतर रोशनी होगी। आज का चिंतन, आज का विचार भाई, एक और प्रहलाद नारायण शुक्ल जी ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत से भेजा है, लेकिन ऐसा ही चर्चा हमारी एक और लिसनर हैं, वो भी शुक्ल हैं, वनिता शुक्ल जी। इस चिंतन का जो जिक्र आपने भी किया था, आने वाले समय में भी हम और इस तरह के चिंतन शामिल करते रहे हैं, करते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, अच्छा रेट मिल रहा है, आज भी रेट अच्छा है। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू इंडिया, सेंड इट थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK। दे आर गिविंग टुडे 126.4 रुपीज, 126 रुपए और 40 पैसे इस समय रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। 126.4, that's the maximum today for £1. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
4: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
5: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
3: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
7: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.

0: what a melody by who can arrange this type of tune, one and only कल्याण जी आनंदी. और साहब ये कौन सी फिल्म का गीत था, शायद दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दैट वाज टेकन फ्रॉम द उपासना. यस, उपासना वाज द फिल्म, 1971 की फिल्म. और भाई आपको याद आए होंगे फिरोज खान, उन पर पिक्चराइज था ये गीत. एक और गीत था जो पहले आपने सुना, वो भी उनकी फिल्म का गीत था. और फिरोज खान साहब से हमारे बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज अगर वो दुनिया में होते तो अपना 87वां जन्मदिन मना रहे होते. कहते हैं कि मुझे याद है उनकी एक फिल्म हमने बचपन में देखी थी, खोटे सिक्के, उसके बाद से मैं उनका फ़ैन बन गया. वाजी बैसन साहब. और कहते हैं कि मैं उनकी तुलना हमेशा हॉलीवुड के एक एक्टर से करता रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. भाई मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, चरणजीत सिंह चन्नी, चन्नी साहब जो गायक कलाकार हैं यहाँ ब्रिटेन के, लेकिन जब फिल्मी दुनिया में उन्होंने धुनें बनानी शुरू की तो फिरोज़ खान की फिल्म की धुनें उन्होंने बनाई थी यलगार की, और वो लेके आए फिरोज़ खान को स्टूडियो में मेरे सामने. भाई तो उनसे बातें हुई, फ़ोटो भी खींचे सब, पर मैंने पता नहीं क्यों अपनी लाइब्रेरी को जो है ना सही ढंग से नियोजित करके नहीं रखा, वरना ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी हस्तियों से मुलाकात, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास थी, आज मैं मिस करता हूँ. फिरोज़ खान साहब के साथ फिर एक बार संजय दत्त के साथ, हाँ, उनकी फिल्म जब रिलीज़ हुई है यलगार, तो भाई स्टेज पर मैंने उन्हें प्रेजेंट भी किया, ख़ासकर संजय दत्त को. संजय दत्त को अलग से फिर इंटरव्यू बाद में किसी और फिल्म के लिए किया था. भाई इन लोगों की वो मुलाकातें, वो बातें याद बनकर साथ हैं. संजय साहब से तो फिर भी मुलाकात हो सकती है, उम्मीद है, लेकिन फिरोज़ खान साहब आज अपना जन्मदिन मना रहे होते, आज भाई याद कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे लोग फिल्मी दुनिया में. उनकी फिल्म का एक आध गीत और सुनवाएंगे और बहुत सारी जानकारी तो वाली भाई जुटा के लाएंगे, उनका प्रोग्राम भी सुनिएगा. एक संदेश आपके साथ साझा करना है भाई. एक तो हम याद दिला दें आपको कि मर्सिडीज बेंज वाले जो हैं वो याद दिला रहे हैं. वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह के कारोबार में हैं कि भाई मर्सिडीज वैन से आप खुद अपना बिजनेस चलाते हो या कोई आपका जानकार, तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, आपकी रोजी रोटी और आपकी इज्जत सब उसी पर डिपेंड करते हैं. इस सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आए गए हैं अपटाइम प्रॉमिसेस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के अनेक फायदों का एक पैकेज है. लीजिए, 24/7 आपकी सेवा में हाजिर रहेगा रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, वर्कशॉप खुली रहेगी, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ इसमें पैकेज में शामिल है. यानी आपकी वैन के ख़राब होने पर आपका बिजनेस नहीं रुकेगा, उसे लगातार चलाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए सब एक जगह. तो साहब ऐसा करें, मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ हैं, आज ही मर्सिडीज डैश बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएं. इसके अलावा भाई कुछ और भी है, एक और संदेश है, और ये है जियो हॉट स्टार की ओर से. कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1%. ऐसे लोगों को भाई जो दुनिया भारत के टॉप 1% उन लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं अनिल कपूर, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉट स्टार. डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉट स्टार ऐप नाउ. जियो हॉट स्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप.
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: ऐसी ऐसी धुने, ऐसे ऐसे गीत क्यों लगा रहा है ये कंप्यूटर भाई? फिर मेरा गाना निकल जाएगा साथ में, फिर लोग कहेंगे क्यों गाते हो. नहीं रुका जाता भाई, गाना निकल जाता है.

0: जा।
1: बेल्जियम वाली प्रीति भारत पहुंची हुई है और वहां से मैसेज भेज रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया में सुन रहे हैं, मम्मी के पास आए हुए हैं। खुद भी सुनिए, औरों को भी सुनवाइए, वहां और भारतीयों को भी बताइए हमारे साथ जुड़े। थैंक यू यगीत आपके नाम।

0: brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: क्या बात है और लीजिए साहब संदेश आ गए हैं। पहले तो चिंतन के विषय में बहुत सारे प्रशंसक जो हैं अपनी राय भेज रहे हैं और शर्मा जी आपने भी कुछ संदेश बटोरे। निर्मला जी कह रही हैं आपकी आवाज़ भी बिल्कुल मुकेश जैसी है, गुड जॉब। और ये कौन है भाई? हाँ ये निर्मला जी कह रही है थैंक गॉड कि आप सिंगर नहीं है वरना आप हमें नहीं मिलते यहाँ रेडियो पर। अरे साहब कहते हैं आप कभी कभी गाया करें, गाने को दिल तो करता है लेकिन बात क्या है कि गाने के वो पैसे नहीं देते, धमकी देते हैं। थैंक यू शर्मा जी, नमस्कार। परसों मैंने भी आपको एक चिंतन भेजा था। भाई ये विसलिंग बंद करो यार, मैंने इतना कम कर दिया इसका वॉल्यूम। परसों मैंने भी आपको चिंता भेजी थी, उस पर चिंतन सुनाइए। क्या बात है, कहते मैं आपको क्या कह के बुलाऊं। शर्मा जी कहता हूं तो थोड़ा सा फॉर्मलिटी सी लगती है, पराए पराए से लगते हो जबकि आप मेरे बहुत अपने हैं। कौन है भाई ये अपना? ओ नेहरा साहब। भाई नेहरा धनोरी पवन लिखते हैं कि आपको क्या कहूं, मैं आपको दादा कह सकता हूं। हाँ उम्र के लिहाज से नहीं भाई, बात यह है कि और हमारे रामचंद्र ने और हमारे जो जितने भी वो हरियाणवी बच्चे हैं जो नौजवान मुझे एड्रेस करते हैं दादाजी कह के, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी उम्र ज़्यादा है। उम्र नहीं है ज़्यादा, फिर भी कैसे हो गए दादा। भाई हमारे यहाँ हरियाणा में रिवाज है ब्राह्मणों को दादा कहने का। तब भाई छोरे सुन रे, उम्र तो मेरी कुछ भी ना है, यही कोई मेरा ख्याल है 30 साल और कुछ महीने, महीने मतलब ये 250-300 महीने, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन दादाजी कहो सम्मान से अच्छा लगता, बड़े प्यार से ये बात लगता है कि अपने इलाके का ही कोई व्यक्ति ये जानता है भाई कि संबोधन जो है ये ब्राह्मणों के लिए होता है। दिनेश पोपट साहब, मुकेश जी के आप भी दीवाने हैं मुझे मालूम है, और ये सब आप ही के नाम के गाने हैं जो बज रहे हैं। थैंक यू वेरी

0: अच्छा कहते हैं आई एंजॉयिंग लिसनिंग यू व्हेन यू ऐड योर वॉइस। बताया ना दिनेश जी, गाने को मन तो करता है पर धमकी से दिल डरता है। कहती है अगली बार गाया तो आपका गला दबा देंगे। थैंक यू। और बाली भाई मेरे बहुत अच्छे सहयोगी भी है और वो प्रशंसक हैं, वो खुद इतने बड़े सिंगर हैं लेकिन वो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं। राजकुमार साहब, शुक्रवार की प्यार भरी राम राम सब तक पहुंचे और आपका दिन शुभ मंगलमय हो ये प्रार्थना है। सुंदर आज का चिंतन बहुत पसंद आया। राजीव पटेल जी, सो नाइस ऑफ यू, आपको भी चिंतन अच्छा लगा। वियाना में हमारे अनिल सोनी जी रेगुलरली सुनते हैं और भाई ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं चिंतन के विषय में, कहते हैं ब्यूटीफुल चिंतन। स्वीटी कालड़ा जी, आजकल आप रेगुलर लिसनर हैं, आपके नाम रोज़ का एक गाना होगा जो अच्छा लगे रख लेना, पसंद ना आए पैसे वापस। वत्सला जी थैंक यू, नाइस चिंतन। आप कहती उल्लास टोरंटो में, थैंक यू वेरी मच। और भरत गंगाराम जी, पम्मी सिंह स्लव में, आंटी जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला, कैसी हैं आप, सुनती रहिएगा हीतल सोलंकी। और आप कौन है जी, आपका नाम ढूंढना, हाँ हीरल, थैंक यू वेरी मच। तो भाई आप सबको आपके संदेशों के लिए शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या सुनवाते हैं, कुछ तो लेके आते हैं।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा,
0: क्या है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट में भाई, नए एपिसोड 35 में जो हमारा एपिसोड है ना, राज बदन 5 ईयर शोकेस, 5 बरस हो गए हैं उन्हें टेक ओवर किए हुए लाइका रेडियो एज लाइका रेडियो नेटवर्क एज अ सीईओ। और भाई वो अपने अनुभव बताते हैं और जो रंग रूप दिया है इस रेडियो को, नेटवर्क को, जो नई चीज़ें शुरू की हैं, नए स्टेशन टेक ओवर किए हैं, नए नए कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो उसके बारे में बात करते हैं रूबी रजा और डोनी ब्रेस्को के साथ। और भाई आप भी सुनेंगे तो हमारे रेडियो की कुछ अंदरूनी बातें हैं जो हम नहीं बताते हैं, तो वो उसमें डिस्कस की गई हैं, ज़रूर सुनिएगा। और इसके अलावा भाई राज बदन टॉक्स अबाउट the nervous and the responsibilities and whatever it comes with the role of CEO. भाई दूसरी बात यह है कि हमारे ये जो एपिसोड्स कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, लाइका एक्स्ट्रा अवेलेबल ऑन Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Laika Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. ये है लाइका गोल्ड,
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: The Cycle of Love from executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
5: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
4: The Cycle of Love in cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
6: The wait is over. Prakhyat Spice Village Hawe Haro ma khuli gayu chhe. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe laavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Haro. Spice Village Haro, now open. Khawa, madwa ane celebrate karvanu tamaru navu sarnamu.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
14: 0730 99 8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730 99 8823.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
17: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
18: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Ravi Sharma Show on Leica Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates they are giving for £1 in Indian currency, 126.94 rupees. Afghani 84.09. Pakistani rupees 366.95. Bangladeshi takas 163.18. And Sri Lankan rupees 437.18.
19: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the moment 104.55 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: रब से पहले इश्क
1: डेफिनेटली इश्क था शायद सबसे पहले, भाई इश्क से ही उत्पत्ति हुई है पूरे विश्व की और इश्क ही दुनिया को चलाता है। वेल, कैसा लगा आपको ये गीत गुरदास मान की आवाज में? भाई फिल्मों में कम गाए हैं हिंदी फिल्मों में मान साहब ने, लेकिन कुछ गीत तो भाई सुपर डुपर या मेगा हिट कहे जा सकते हैं। यह गीत भी दिल को छूने वाला रहा, पत्थर दिल फिल्म से हमने लिया था और ये उस समय से मैं बजाता आ रहा हूँ जब ये वो काले तवे होते थे ना उन पे आया था ये, और हमारे दोस्त विक्रम टाह ने हमें दिया था वो उन दिनों, वो HMV का यहाँ पर वो चलाते थे, कारोबार संभालते थे। राइट, ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर। इससे पहले सौदागर फिल्म का गीत सुनाया हमने आपको, तेरा मेरा साथ रहे, लता जी की आवाज़ में था। और अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं भाई पाउंड का रेट भारतीय करेंसी में।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: Well, State Bank of India UK. For £1 they are giving in Indian currency 126.4 rupees. 126.40 rupees. You can transfer via branch, online or by using the YONO SBI UK mobile app. Yaad rakhi, ye rate jo hai na, aaj ke liye maximum hai. Aur sahab, terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: ये है लाइका गोल्ड, तुम देना साथ मेरा।
4: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा, एवरी डे एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
6: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
7: दोस्ती, मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
8: सामने काम कर, मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
9: नाकता चाहिए इतना?
7: Soul Sutra Productions presents मित्रता, फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी। प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख। डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
10: तू गांडो छे? आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछर वालों ब्रेक मारे छे यार।
7: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
11: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા, શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી। એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10, 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15, 5-10 વર્ષના બાળકોને £5, અંડર 5 ફ્રી, 11 રાતનો સીઝન પાસ £100। રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક, 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે બેસ્ટ Best.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit Ambala.co.uk.
13: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी। कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 Stonefield Way, फर्स्ट फ्लोर Unit 2, साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777 2875 09।

0: आजा आजा माही। भाई आजकल के इनविटेशन ऐसे होती है उनमें पता नहीं चलता वो बुला रहे हैं या आने के लिए मना कर रहे हैं। अब एक इनविटेशन आया शादी का, उसमें लिखा है कि जी आपका आना ही एक गिफ्ट है, इसलिए कृपया गिफ्ट ना लाएं। मतलब शादी में आपका आना ही उपहार है और मेहरबानी करके उपहार ना लाएं। समझ में आए तो बताना भाई, वो बुला रहे हैं या आने इसीलिए मना कर रहे हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: The one and only one, Ravi Sharma, on your number one.

0: नाम पूछ के फिर मत मिलना, काम पूछ के फिर मत मिलना, बैंक अकाउंट पूछ के, बैंक अकाउंट पूछ के फिर मत मिलना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: नाम पूछा जी, पता लगा कि नाम है रितु और अशोक बाली एंड वी आर रिटर्निंग टू लंदन फ्रॉम मैनचेस्टर। हमारे लिए गाना हो जाए? हो जाएगा जी, जरूर हो जाएगा, लेकिन पहले एक इन्फॉर्मेशन हो जाए। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ गई भाई वो इन्फॉर्मेशन? देखो ऐसे यहाँ है ये इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ये है, कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं भाई, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मैट्योर अरीना ऑन सैटरडे द 31st ऑफ अक्टूबर। टिकट एज एट AXS एंड इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर आर लाइका रेडियो नेटवर्क। भाई ज़रूर देखिएगा, सुनील ग्रोवर बड़े जीनियस वो कॉमेडियन हैं। ये भी बता दूं, हरियाणा से हैं, सिरसा से। ये साथ बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरियाणा ने बड़े क्या कहते हैं चमत्कारी कलाकार दिए हैं, पहलवान दिए हैं, फौजी जवान दिए हैं, और वो क्या है, वो छोड़ो क्या रखा, सच्ची बात कपिल देव दिया, रामदेव दिया हरियाणा ने, हाँ रवि देव दिया, हाँ और कौन दी, उसका नाम नहीं लेंगे। नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। कहते सपना चौधरी भी तो तुम नहीं दिए, हाँ जी दिए थे।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। LYCA। दिस इज Leica।

0: ये पंजाबी लोग हर चीज को पंजाबी बना लेते हैं भाई। मैंने कहा कि भाई लता जी हैं, लता मंगेशकर जी, उन्होंने बड़ा बढ़िया गाना गाया, तो साढ़े पंजाबी आ। मैं कहा लता मंगेशकर पंजाब, ओ भाई ना तो ही पता लगता है लता मंगेशकर, लता मंगेशकर अनायत पंजाब बड़े हैगी। मैंने कहा उनका वो गाना है ना तंडोली मेरा मन डोले वगैरह वगैरह, वो कितना बढ़िया गाया उन्होंने, उस पर मराठी प्रभाव है। कहते नहीं ऐदा नहीं है जी, तन डोले मन डोले का पंजाबी च है इदा, भाई तन डोले ओ मेरा मन डोले, तन डोले ओ मेरा मन डोले, ओ मेरे दिल दा गया करार, ओ तन डोले ओ मेरा मन डोले, ओ भाई तन डोले ओ मेरा मन डोले। साउथ होल ट्रेवल फिर याद दिला रहे हैं भाई, दे आर नोन फॉर देयर कम्पेटिटिव हॉलीडे डील्स टू दुबई, और आप लुत्फ उठाइए उनकी सेवाओं का। कॉन्टेक्ट साउथ होल ट्रेवल टुडे ऑन 02085748410। साउथ होल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
3: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री निलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
6: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
7: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
6: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
12: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October and marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars, supported by BFI.

0: पाजी ठेका किधर नू पड़ता है
1: पंछी पिंजरे से छूट गए सब अपने वादे टूट गए लो साहेब हमसे रू

0: अभी नहीं सो सकते भाई, कुछ लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी है। क्या आपको मालूम है कि आज मोरारी बापू कथावाचक अपना जन्मदिन मना रहे हैं? संत मोरारी बापू, बापू तुमने प्रणाम छे। बिशन सिंह बेदी अमृतसर में आज ही के दिन जन्मे थे 1956 में। बापू 46 में जन्मे थे 1946, और बिशन सिंह बेदी 1956 में जन्मे थे। भाई आज होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। श्रीनगर में आज ही के दिन जन्मे थे महान वैज्ञानिक भारत के सतीश धवन साहब, हमने इन पर भी चिंतन किए हैं। और इनके अलावा भाई दीनदयाल उपाध्याय एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड नाम है भारतीय जनता पार्टी के, पुराने समय में जनसंघ जब था तो उस समय के लीडर और आरएसएस के थिंकर एंड को फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ। भाई दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनके नाम पर अब रेलवे स्टेशन भी है और बहुत उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुए। बहुत प्रतिष्ठित जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। दिव्या दत्ता एक्ट्रेस, शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। फिरोज खान साहब का भी जन्मदिन आज हम पहले बता चुके हैं, हमारे बैसन साहब ने बताया था, याद दिलाया था। तो भाई और क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल का भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। भाई चौधरी साहब का जब भी हो जन्मदिन, हम बड़ी रिस्पेक्ट से उन्हें याद करते हैं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। और साहब आपके घर में, आपके परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: ये है लाइका गोल्ड,
2: ये रिश्ता क्या कहलाता है।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय ये रिश्ता क्या कहलाता है, एवरीडे एट 7 PM ऑन स्टार प्लस एंड स्ट्रीम इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार। Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: हमारी रक्षक है वो।
8: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
9: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
8: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
10: From South Fork Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
12: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
14: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
15: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
14: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
15: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
14: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
15: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा।
14: शाम 7 बजे डोर्स ओपन।
15: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02082460678।
16: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और बहनों भाइयों, अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। तेरे जाने की यूं मुझको कमी महसूस होती है कि दिल में दर्द, आंखों में नमी महसूस होती है। मिलकर आपसे बेहद खुशी महसूस होती है, पर हिजर की एक घड़ी पूरी सदी महसूस होती है। सूरज, चांद, तारे, फूल, कलियां, तितलियां, जुगनू कहाँ है जिसकी ये कारीगरी महसूस होती है। बाली भाई आ रहे हैं और शर्मा जी जा रहे हैं। मैंने भी एक भाई, ये तो चमन जी की कविता थी और चमन जी की कमी महसूस होती है, अपने हाथों से किताब पे लिख के दिया प्यारे रवि शर्मा को सप्रेम भेंट, और ब्रैकेट में लिख दिया मुफ्त में। थैंक यू सर, वी मिस यू। चमन लाल चमन, हमारे बहुत सारे प्रेजेंटर भाई आज हमारे बीच नहीं है लेकिन यादों में रहते हैं। उनमें जैगम अली हैं और भाई चमन लाल चमन हैं, साथी लुधियानवी हैं, अजमत बाजवा हैं, लक्की ढीलन हैं, मेहर खान हैं और भाई हमारे बहुत सारे साथी हैं। क्या करें, अब आज तो उस दिन की याद नहीं आती जब लेके चलेंगे तुझे यम के बाराती। रवि शर्मा, जाते हुए तू कितने ही देखता है, जाना पड़ेगा तुझे भी, तुझको पता है फिर भी बना अनजान कहाँ।
17: आज गा लो, मुस्कुरा लो,
0: जी लो, जी भर के जी लो। इजाजत दीजिए, बाय बाय।

0: ओह माय गॉड, ऐसे गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है, बिकॉज एक आवाज जो बहुत जल्द ही दुनिया को छोड़ के चली गई, वो है आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की। जी हाँ, एसपी बाला सुब्रमण्यम। अभी इनका असली नाम तो बड़ा लंबा सा है, श्रीपति पंडिताराय ड्यूला बाला सुब्रमण्यम, बोर्न ऑन 4th जून 1946 एंड सैडली अनटाइमली डिमाइस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ऑन 25th September 2020, कॉमनली नोन एज SPB या बालू। इन्होंने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए बहुत कम ने किए, मुझे लगता है यशुदास जी मैच होते हैं इनके रिकॉर्ड्स के साथ, लेकिन देखा जाए तो 40,000 से ऊपर गाने 16 जबान में। और मैं क्या कहूँ, अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं देखूँ तो मैंने मेरी सारी ज़िंदगी बिता दी और 51 गाने गाए, तो उसके सामने मैं जब 40,000 सोचता हूँ तो दिमाग फिर जाता है मेरा, मतलब चकरा जाता है। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने अवार्ड्स जीतना शुरू कर दिया। इनको टाइफॉइड हो गया था तो स्टडीज़ छोड़ दी, ही डिसकंटिन्यूड हिज स्टडीज एंड ही जॉइंड एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। सोचो कहाँ से कहाँ ले जाती है तकदीर। 1964 में ही वन द फर्स्ट प्राइज इन अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन फॉर एमेचर सिंगर्स ऑर्गेनाइज बाई द मद्रास बेस्ड तेलुगु कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। And then he was the leader of light music troupe composed of Aniruddha, that is on the harmonium. Phir Ilaiyaraja on the guitar. Ilaiyaraja, the great music director, he was on the guitar and later on the harmonium. And Bhaskar on percussion. ये सब बड़े बड़े नाम हैं, अगर इंडिया में रहता हो कोई तो उनको समझ पड़ जाती है। लेकिन हम इतना ही बोल सकते हैं कि इनकी करियर जैसे आगे बढ़ी, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही वॉज अ ग्रेट थ्रेट एज सून एज ही एंटर्ड, किशोर दा न्यू के कोई नया सिंगर आया है, सारे समझने लगे। लेकिन प्रेस वालों ने बुरी खबरें छापकर इनको डिसक्रेडिट कर दिया। कैसे, अरे साउथ का आदमी है, इसको वो प्रोनाउंसिएशन तो आता नहीं है, लेकिन आपने गाने इनके सुने, उसमें कौन सा प्रोनाउंसिएशन गलत है। सोचो, कोई ये नहीं सोचता था, लोग सुनकर ही बस हाँ ठीक है वो साउथ का है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम तो होता होगा, तो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भगा दिया ये बोलकर। लेकिन इट वॉज नॉट ट्रू, ही वॉज सो रेडी। और मैंने 2-3 ही सिंगर्स देखे हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से 2 की तो मैं बात कर सकता हूँ। एक है कविता कृष्णामूर्ति जी, जो नोटेशंस लिख के गाने गाते हैं। जी हाँ, जब मैंने एक म्यूजिक डायरेक्शन किया था तो मैंने कविता जी को बुलाकर मैंने गाना उनको सुनाया, तो जब सुनाया तो शी वॉज राइटिंग, मुझे लगा ये पता नहीं क्या लिख रही है, एंड शी वॉज राइटिंग द नोटेशन सा ग म प ध, यू नो। सो बाद में मैंने कहा दीदी आप क्या कर रहे हैं, तो बोलते मैं गाना लिख रही हूँ आपका। तो मैंने बोला मैंने वर्ड्स तो दिए नहीं आपको। बोले वर्ड्स नहीं, मैं नोटेशन लिख रही हूँ। अरे फिर मैं चेन्नई गया, आई वॉज विद पी के मिश्रा द राइटर ऑफ AR रहमान, जिन्होंने रोजा के गाने लिखे थे, उनके साथ एक राजस्थानी एल्बम मैं कर रहा था। तो जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा मेरा गाना है सुबह सुबह MM क्रीम के साथ और सिंगर्स है SP बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ, तो मैं तो एकदम पागल हो गया, मैंने कहा मुझे ले जाइएगा। तो बोलते हाँ मैं सुबह जगा दूंगा। मुझे लगा सुबह जगाने में कहीं 9 बजे 10 बजे जगाएंगे, जैसे बॉलीवुड में लोग उठ के 11-12 बजे जाते हैं। इन्होंने तो 5:30 बजे मेरे को धक्का मारा और कहा उठो रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मैंने बोला अभी तो अंधेरा है। बोले 6 बजे तो उनका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, 6-7 बजे। हम भागे और वहाँ पे बाला सुब्रमण्यम जी को मिले और MM क्रीम जी उनके साथ बैठे थे और उनको गाना सुना रहे थे बाजे पे, हारमोनियम पे, और वो नोटेशंस लिख रहे थे। आय आय आय। एंड देन आई चित्रा जी, चित्रा ऑफ द साउथ, नॉट जगजीत सिंह जी की बीवी, लेकिन चित्रा ऑफ द साउथ। वो आई तो दोनों ने गाना गाया. मैं वहाँ बैठा था और मैंने देखा साउथ का कोई गाना था वो करके, तो फटाफट उन्होंने थोड़ा भोजन किया और भोजन के लिए चौकड़ी मार के वो लोग सब नीचे बैठ जाते हैं और फिर सामने बनाना लीव्स आती हैं, उसके ऊपर इडली सांभार थोड़ा सा डोसा वगैरह, तो वो सब खाने बैठ गए और मुझे भी बुलाया. माय गॉड द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, यू नो. I never realized he was so good until later. But this is the story I know of Balasubramaniam ji, who passed away very sadly at the age of 74 due to COVID. Gaate the right till the end, lekin COVID took his life away. Let's listen to his songs. Next gana jo hai, wo bada pyara hai. Suniyega. मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स एंड इन द सेकंड आवर वी शैल डू अनदर ट्रिब्यूट.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can fetch up to 126.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
3: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: This Ganesh Chaturthi, celebrate the spirit of togetherness and spread festive joy with your loved ones in India.
7: With ICICI Bank UK, send money to India and get a 20 paise preferential exchange rate.
6: Simply use promo code Ganesha20 when you transfer. The promotional period is 14th September to 24th September 2026.
7: So, this Ganesh Chaturthi, make every rupee count and share the joy from the UK to India.
6: ICICI Bank UK, transfer now. Celebrate together.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
9: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
6: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
9: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में. यूके में पहली बार
6: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन.
9: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा.
6: शाम 7 बजे डोर्स ओपन.
9: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02084260678.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हमारी रक्षक है वो.
2: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
3: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है? कौन कर रहा है ये?
2: Mystery, Fantasy, Action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia. In cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: द वर्सेटिलिटी, एक तरफ फर्स्ट लव का गाना और ये गाना फुल ऑफ नखराज। व्हाट अ वर्सेटाइल सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट गाना है फिल्म सागर का।
1: Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: Oops, did I say Sagar? Yeah? Yes, it is Sagar.

0: Yes, these songs are evergreen of Firoz Khan. Firoz Khan, Zulfikar Ali Shah Khan. इनके बारे में आप क्या नहीं जानते? 25th September 1935 to 27th of April 2009. A man who had so many wonderful qualities. You just can't match him with anybody else. You know why? Because he was he had his flamboyant style. You know, he was known as the Clint Eastwood of the East. Yes, Clint Eastwood of the East, because he was a style icon. You know, with or without hair. आपने बालों के साथ भी देखा, आपके बालों के बगैर भी देखा in the later part of his life. But a style icon. Flamboyant style, the cowboyish swag, and the cigarette-toting persona, you know, revolutionized the style of regular filmy heroes. Regular जो filmy commercial heroes थे, वो भी शर्मा जाते थे फिरोज खान के सामने. The handsome-looking Afghan, that's right. इन्होंने acting भी की. इनको इतना ज़्यादा सराहा नहीं गया था क्योंकि सेकेंडरी रोल्स ज़्यादा मिलते थे इनको, जैसे कि फिल्म थी सफ़र, दूसरा एक गाना था जिसमें दादी अम्मा मान जाओ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सी फिल्म थी वो, उसके अंदर भी इनको सेकेंडरी रोल्स मिले थे. कुछ नेगेटिव रोल्स भी इन्होंने निभाए थे, लेकिन 50 प्लस films 60s, 70s और 80s में, एंड ही वॉज वेरी वेल appreciated. मुझे याद है जनाना शोज हुआ करते थे शान सिनेमा में, और उस दौरान जनाना शोज में मुझे ले गए थे, मेरी मदर और मेरी सिस्टर मुझे जनाना शोज में, दोपहर का शो हुआ करता था, एंड उस जनाना शो में मुझे ले गए थे. एंड इट वॉज अ रिपोर्टर राजू फिल्म थी, और दूसरी फिल्म थी फिरोज खान की चार दरवेश. एंड तब से मैं बचपन से उनका फैन बन गया था, बस फिरोज खान को देख कर ही मैं खुश हो जाता था. आई जस्ट फाउंड हिम सो गुड लुकिंग ऑन स्क्रीन. एंड द फिल्म दैट ही हैड डन चार दरवेश विद फाइटिंग तलवार लेके एंड ऑल दैट, That those kind of films I used to like when I was a young boy. Anyway, but मैंने सात गाने चुने, सात तो नहीं पर छः गाने मैंने चुने जो मुकेश जी ने गाए थे इनके लिए. और कपल ये दो तो आपको मालूम ही था जो मुकेश और कंचन ने गाए थे, क्या खूब लगती हो, फिर तुमने किसी से प्यार किया है. लेकिन आगे जो गाना आएगा फिल्म सफ़र का, फिर उसके बाद जो है तीसरा कौन एक फिल्म थी, उसमें लता मंगेशकर के साथ मुकेश जी ने गाया था, वो भी फिरोज खान पे पिक्चराइज हुआ था. फिर अनजान राहें एक दूसरी फिल्म थी, उपासना एक तीसरी फिल्म थी. मतलब के उपासना वाला गाना आई थिंक रवि शर्मा जी ने सुना दिया था, मैं देखता हूँ, अगर नहीं तो डेफिनेटली आपको मैं सुना दूँगा. एंड अगर वक्त कम पड़ा तो मैं आपको कुछ सरप्राइज सॉन्ग सुना दूंगा जो मुकेश जी ने नहीं गाया था, लेकिन किसी ने भी गाया हो, लेकिन आपको मैं सुना दूंगा. जस्ट डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ फिरोज खान साहेब.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the current rates of SBI UK, £1 in British sterling can get you up to 126.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons is sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
3: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
9: સામડ એક કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ
10: નાખતા જઈએ એટલે
8: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
11: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
12: તારી મારી દોસ્તી
8: સ્ટારિંગ વિરાજ ખેલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી મિત્રતા ઇન સિનેમાઝ નાઉ યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: Four beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
17: Book now on diwalistory.com.
18: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
20: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: Well, I'm getting comments saying आप क्या कर रहे थे जनाना शो में. मैं सिर्फ 5-6 साल का था and my mother and my sister, they would smuggle me into the cinema because घर पे तो कोई रख नहीं सकता था मुझे उस उम्र में and then there was nobody available for babysitting and all that. तो वो क्या करते थे, they used to just smuggle me with the crowd and it worked. It always worked, you know, because choti si height thi meri and all the ladies just going into the cinema and saath saath mein mujhe bhi le lete the. And then baad mein to andhera hi hota hai cinema mein. So that is the exact truth and I would not exaggerate because that's how I saw Firoz Khan in a Janana show, in couple of Janana shows I would say. There was another film as well. I mean, I don't want to go further anyway. But Firoz Khan sahab ko मैं जब मिला तो मेरा गिटार लेकर मैं गया था और एक कैसेट प्लेयर लेकर गया था जिसमें मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ था और वो गाना मैंने उनको सुनाया. मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जां की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह. और उसमें एक लाइन थी, द लिरिक्स वर मैम इट वाज पाक मेरा दिल है कुरान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह. एंड ही वाज फ्लैबगास्टेड एंड ही सेड ये लाइन तो फिल्मों में कभी आई नहीं है, विच इज़ पाक मेरा दिल है कुरान की तरह. वो लाइन जो मैंने सुनाई थी, ही वॉज इलेटेड एंड ही सेज बाली मेरे को ये गाना दे दे. एंड आई वॉज स्ट्रमिंग माई गिटार एंड आई वॉज सिंगिंग इट टू हिम. ही सेज कॉम्पोजिशन भी बड़ी खूबसूरत है बट आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू. ही सेड के ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्म का है, इट इज़ अनु मलिक, उसके साथ बात चल रही है मेरी. So I cannot give you the title of music director, but tu mere ko gana de de. You sing the song in the film, but music director would be named as Anu Malik. Now I was a little bit disturbed there because I said, maine raat din ek karke ye gana maine banaya hai aur main aise to nahi jaane dunga because I know it's a super duper hit. Baad mein KC Bokaria ji ne gana le liya. फिल्म थी प्यार जिंदगी है और उसमें अभिजीत ने गाया है ये गाना. तो कभी मौका मिला तो आपको सुना दूंगा ये गाना, लेकिन द म्यूज़िक वॉज बाई मी. प्यार जिंदगी है फिल्म का, सुनिएगा आप यूट्यूब पे बिकॉज इट वॉज आफ्टर 1999 सो आई कैन नॉट प्ले इट ऑन लाइक अ गोल्ड. बट दीज आर माई एक्सपीरियंसिस. आई डोंट नो इफ आई एम ब्लोइंग माई ओन ट्रम्पेट बट जस्ट रिमेम्बरिंग फिरोज खान साहब एंड माई एक्सपीरियंसिस विद हिम.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
1: Across London, this is Bali Brambat on Like a Gold.
3: Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
4: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410. दैट्स

0: 5748410।
1: साफो ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
2: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।

0: गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्दी मोहब्बत सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर।
1: ओह माय गॉड, कमाल कीती तुसी, जिहड़ी वेरिएशंस भी कीती ना, आई वाज सो इंप्रेस्ड ऑनेस्टली। एक होर हो जाए प्लीज प्लीज रफी दा, प्लीज रफी साहब दा।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जस्ट थिंकिंग What's your favorite song of Rafi Saab, if I may ask?
1: Rafi Saab, de, my God, I can carry on
0: that's
1: with...
0: The same, that's the same reaction, that's why I ask. Because
1: okay, Biswajit. Biswajit di film da si ga. Keda si ga? Pearls wala. Kede moti moti. ओके ओके गाइड दा गाइड दा मैनू सुना दियो ओके
0: गाइड
1: दा हाँ
0: गाइड देते हैं बथेरे प्यार में जिनके सब जग छोड़ा
1: क्या बात
0: और हुए बदनाम
1: वाह
0: उनके ही हाथों

0: है अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए।
1: ओ वाओ वाओ वाओ। हुन एक एक एक कुड़ी हैगी है, ओदा 18th बर्थडे हैगा एंड हर नेम इज केइला। ते ओनू मैं जोक मार के कहा सी के अकेला हूँ मैं, ओदे वास्ते दो लाइन तुसी हैप्पी बर्थडे टू केइला बोल के दो लाइन सुना दोगे? अकेला हूँ मैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल अकेला हूँ मैं। केड़ा केड़ा गाना है?
1: अकेला हूँ मैं
0: ओके
1: इस दुनिया में, है ना, कोई साथी है तो मेरा साया।
0: सो हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट कैला,
1: यस,
0: गॉड ब्लेस यू विद ऑल द लव एंड हैप्पीनेस,
1: यस।
0: एंड बाली जी हैज संग सो ब्यूटीफुली कि मैनू फिर
1: नहीं नहीं इतना ना बोलो
0: हो रहा as he has given you such a beautiful dedication and he's made you this birthday okay. of yours so beautiful.
1: ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੋ।
0: But ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ
1: yes.
0: ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ।
1: Please.
0: For Kaila on her birthday.
1: Yes.

0: गाएं, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर कैला, हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: शादा दिन बनाता है। इफ पीपल वांट टू गो एंड लिसन टू अमन त्रिखा एंड ऑफ कोर्स वी गॉट इंद्राणी दत्ता विद यू सिंगिंग एज वेल एंड ना मजा होगा। संजय कपूर, आफताब शिवदासानी एंड दिस इज जेज एंटरटेनमेंट ब्रिंगिंग टू यू बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन एंड ऑफ कोर्स विद संजय कपूर, आफताब शिवदासानी एंड अमन त्रिखा एंड ऑफ कोर्स इंद्राणी दत्ता संडे 27 सितंबर at Leicester's De Montfort Hall. So it's Live Legends live in Leicester. Yes, Leicester's De Montfort Hall. Exclusive radio partners are Laika Radio. And Aman Paji, toda apna gana ek suna deo, please.
2: Main us to pehla main sare jide vi sunne wale hage, main dassna chahunda ki toda ek gana, sare gaane toda inne chartbuster, blockbuster rahe. But mera personal jeda favorite hai, main hune vi sunda, main sunda aa reha jadon ta release hoya oh gana, te main gym vich vi sunda, mainu inna sukoon milda hai oh gana.
1: ਕਿਹੜਾ?
2: ਤੇਰੇ ਬਿਨ
1: ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ
2: ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨੇ ਵਫਾ,
1: ਵਾਓ,
2: ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ,
1: ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ,
2: ਓ ਮੇਰੀ ਜਾਨੇ ਵਫਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ साथ रह कर
1: yes.
2: मुझे

0: ओह माय गॉड, आपने एक एक सुर ऐसा पी लिया है. ऑनेस्टली आई कुड नॉट फॉल्ट यू एनीवेयर. इनफैक्ट यू डिड सच अ ग्रैंड जॉब. एंड क्या रेंज है, you were fantastic. Thank you very much for the honor.
1: Thank you to you to inspire me, and I think millions of artists and
0: thank
1: singers
0: you, Aman.
1: Like me.
0: Thank you,
1: from
0: Aman.
1: Your music, from your generosity, from your energy, from your vibrance.
0: Thank
1: it's,
0: you
1: it's
0: Aman.
1: All so unique and so all so beautiful and so lovely. It's so pure and such a rarity these days.
0: मैं आ रहा जप्पी पान 27 नु. मैं आ रहा जप्पी पान.
1: हां जी आया नु जी, जी आया नु. बिल्कुल आओ
0: ते हुन ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼.
1: जी जी बिल्कुल. हां जी
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अमन त्रिखा.
1: हुक्का बार सन ऑफ सरदार प्रेम लीला ते सारे ने सुनया ही हुआ है, इना प्यार दिता है.

0: बात है, तुमसे
1: वाह
0: दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है, हम तुम्हें कैसे बताएं, तुम में क्या क्या बात है, तुमसे दिल में शायरी है, इश्क की सौगात है।
1: ओह माय गॉड, अब मैं पब्लिक को यही इतना इतना ही कहूंगा, लिसनर्स को, इफ यू वांट टू लिसन एनी मोर सॉन्ग्स, इफ यू वांट टू लिसन टू अमन त्रिखा एंड यू वांट टू सी संजय कपूर, आफ्ताब शिवदासानी एंड इंद्राणी दत्ता, सो हेड ऑन विथ मी संडे 27 सितंबर एट लेस्टर्स डी मॉन्टफोर्ट हॉल, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो, एंड वन मैन वी हैव टू रियली रियली अप्रिशिएट इज Jay Kotak of Jay's Entertainment. Hana Paji.
0: Absolutely, Paji. And he's such a warm, such a wonderful, lovely soul.
1: Asi Punjabi che kende na bibba banda.
0: Bibba banda, bilkul. Bilkul.
1: Yeah, he's such a cool guy, I tell you.
0: Absolutely,
1: love him.
0: Absolutely.
1: So, looking forward to seeing you on 27th.
0: Likewise, Paji. Likewise. And such an honor to speak to you. And God bless you.
1: Bless
0: as
1: you.
0: Ever.
1: My blessings are always there with you. My
0: I'm
1: blessings.
0: Looking forward for your esteemed presence.
1: Sure, Aman.
0: To grace us all.
1: Sure, Aman.
0: To have your blessings and to have the kind of energy that you always carry with you.
1: It'll be a sheer pleasure. Sheer pleasure meeting you. It'll be a sheer pleasure. Thank you
0: Likewise,
1: so much.
0: Buddy. Likewise, buddy. Thank you. Thank
1: Loads
0: you
1: of love. Bye.
0: Thank you. Buddy. Thank you.
1: Bye-bye. And that was the great voice of Aman Trikha. Can you believe? Honestly, mera din ban gaya, mera weekend ban gaya. And I'm looking forward to meeting the amazing personality with a good voice and such a bubbly personality. Man sent by God. Honestly, Aman Trikha.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com. We'll be right back.

0: प्यार दो प्यार लो, व्हाट अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाबाज इन द वोकल्स ऑफ सपना मुखर्जी। वेल ये तो जस्ट शुरुआत है, थे ना ये दो धमाकेदार गाने, प्यार दो प्यार लो फ्रॉम जाबाज एंड लाल दुपट्टे वाली फ्रॉम द सुपरहिट मूवी आंखें। नाउ आंखें में ऑफकोर्स थे गोविंदा एंड चंकी पांडे। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हाउ चंकी पांडे गॉट हिज ब्रेक इन टू बॉलीवुड। सो आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द शोज एंड दैट्स व्हेन चंकी पांडे एक्चुअली रिवील कि उनको ये ब्रेक कैसे मिला। सो चंकी पांडे वाज लॉन्च इन दिस मूवी आगी आग विच वाज डायरेक्टेड बाय पहलाज नलानी। नाउ ही वाज लुकिंग फॉर अ न्यू फेस एंड ही हैड ऑलरेडी वर्कड विद गोविंदा इन द मूवी इल्जाम एंड ही वांटेड टू कास्ट गोविंदा बिकॉज गोविंदा एंड नीलम पेयर वाज लाइक सुपर हिट। सो ही वांटेड टू कास्ट गोविंदा फॉर आगी आग बट देन गोविंदा डिड नॉट हैव द डेट्स दैट ही वांटेड एंड दैट्स व्हेन चंकी पांडे एक्चुअली मेट पहलाज नलानी। एंड पता आपको वो लोग कहाँ मिले थे? दे एक्चुअली मेट इन अ वॉशरूम। है ना ये फनी बात। सो एंड दैट्स व्हेन ऑफ कोर्स पहलाज नलानी अप्रोच चंकी पांडे एंड ही गॉट हिज ब्रेक विद आगी आग। ऐसी फिल्मी बातें तो मैं ही आपके साथ करूंगा बिकॉज आई एम योर फिल्मी मुंडा वीर इन फॉर सैंडी शाह ऑन गोल्ड ड्राइव ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 126.4 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono Mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Gold, traffic and travel.
2: In the Wembley area, the A479 Empire Way is still blocked in both directions between Wembley Hill Road and Lakeside Way. It's due to an accident. Traffic queuing in the area. North Pole Road closed in both directions between Wood Lane and Brewster Gardens. It is for accident investigation work. Still slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. And you're queuing on the A40 Western Avenue westbound before Gypsy Corner. The A406 North Circular Road slowing both ways in towards the Hanger Lane territory to the Tube, and minor delays in the district line between Earls Court and Wimbledon. That's due to an earlier signalling problem at Wimbledon.
3: ये है Leica Gold, 10:35 AM. Something's calling at Tesco Mobile, a £50 Tesco gift card. Get yours with our unlimited data sim for just £20 a month for 24 months with club card prices, saving you £120. Don't leave your gift card on hold. Pick up yours today. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Ends 1st of November. Save £5 per month. Club card, 4G phone and 24-month contract required. Terms at tescomobile.com/terms.
4: Ye hai
5: Leica Gold.
6: Tum dena saath mera.
7: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
8: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
9: सांभर एक काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए इतने।
8: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
10: तू गांडो छे आगे मारो ब्रेक मारे तो पाछे मारो ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
8: दोस्ती। Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
7: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
11: Main nikla o gatti leke aaye ho main.
7: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: दिस सोना रे सोना रे सॉन्ग फ्रॉम द सुपर हिट मूवी तीसरी मंजिल इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड रफी साहब. व्हाट केमिस्ट्री बिटवीन आशा पारेख एंड माय ऑल टाइम फेवरेट स्टार शम्मी कपूर. दिस वाज अ सस्पेंस थ्रिलर.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Like a
1: gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: So if you are from Mumbai, you definitely know what Mungda means. And if you know the meaning of Mungda, then message me and tell me ki Mungda ka matlab kya hai. For now, enjoy this song.

0: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
1: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए मीनारज्वेलर्स.com। कॉल 02087677627।
3: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट। 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ और लूज द डिस्काउंट। कॉल सोनाजुएलर्स नाउ ऑन 0208951011।
4: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.

चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, वेल ऐसे गाने हमें यू नो लाइफ की टेंशन से पार ले जाते हैं. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर, सो स्टे ट्यून्ड कॉज बहुत सारी मस्ती होने वाली है इन द नेक्स्ट आवर. Like a radio, now in more places than ever before. Birmingham, Bradford.

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
0: ऑन गोल्ड ड्राइव.
3: सो सैंडी शाह तो है नहीं, तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला था. अब आपको मुझे बताना है कि वो सच है या झूठ. श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित वो बेस्ट फ्रेंड्स, उन दोनों में पक्की यारी थी, ये सच है या झूठ. मैसेज मी, काफी मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ सही कुछ गलत. सो सेंड मी योर मैसेजेस.
4: ये है लाइका गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Kuka Noodles.
3: All right, so the next song ke baare mein ek badi interesting si baat hai. This song, when it released, it was not played on All India Radio. उन्होंने ये गाना बैन कर दिया था. आई मीन दे थॉट दिस सॉन्ग वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, बट आई थिंक दिस सॉन्ग इज अमेजिंग. जीना तमान ने क्या एक्टिंग की है एंड क्या अंदाज है. आशा भोसले क्या गाया है आपने, वाह.

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। इतनी अच्छी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ सीन केमिस्ट्री है तो नजारे हम क्या देखें। ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह, वन ऑफ माई फेवरेट जोड़ीज एवर।
1: It's a lie on Gold Drive.
0: Well, it is actually a lie. Hai la. वीर ने झूठ बोला। सो माधुरी एंड श्रीदेवी वर नॉट फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स दे वर नॉट एनिमीज एज वेल, क्योंकि दोनों की एक दूसरे के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट थी। सो इन वन ऑफ द शोज माधुरी दीक्षित एक्चुअली सेड दैट शी रियली रियली रिस्पेक्टेड श्रीदेवी एंड शी वाज इन ओ ऑफ श्रीदेवी, बट कभी उनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई। एंड देन ऑफ कोर्स मीडिया ने काफ़ी उछाल भी दिया था, यू नो, बिकॉज एट दैट टाइम बोथ ऑफ देम वर बिग स्टार्स। सो यस, वीर ने झूठ बोला, दे आर नॉट फ्रेंड्स बट दे वर नॉट एनिमीज एज वेल।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So your £1

0: इस प्यारे से गाने के बाद वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: कौन आया के निगाहों में खनक जाग उठी, बड़ा प्यारा वाला गाना. आई थिंक साधना वाज सो ब्यूटीफुल इन दिस सॉन्ग. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी वक्त इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले, अ मल्टी स्टारर.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye ya wo.
0: All right, so मैंने आपको ऑप्शन दी थी दैट ऑफ कोर्स आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज कविता कृष्णमूर्ति. सो उनका कौन सा गाना आपको सुना, विच सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन टू, वेदर इट इज जुम्मा चुम्मा फ्रॉम द मूवी हम और डोली तारो डोल बाजे फ्रॉम द मूवी हम दिल दे चुके सनम. सो कीप सेंडिंग मी योर मैसेजेस कॉज द सॉन्ग विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विल बी प्लेड सून.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ढल गया दिन, जी हाँ दिन ढल रहा है मगर गाने नहीं ढल रहे हैं, गाने तो आते ही रहेंगे। कॉज आई एम वीर इन फॉर सैंडी ऑन गोल्ड ड्राइव प्लेइंग सम प्यारे वाले गाने फॉर यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
2: ये है
3: लाइका गोल्ड।
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: So, by popular choice, the song is Dholi Taro Dhol Baje. Our Artist of the Week, Kavita Krishnamurthy, from the movie Hum Dil De Chuke Sanam. Enjoy.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: हेलो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने, मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन

0: चुरा लिया है तुमने जो दिल को. दिस प्यारा वाला गाना इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब एंड आशा भोसले. और इस गाने के साथ वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय बाय. एंड अनीसा जी इज इन द स्टूडियो. तो अनीसा जी हैं तो मैं शायरी तो बोल के ही रहूँगा. आपके चेहरे पे चमक सितारों सी लगती है, आपकी आवाज़ से इस दुनिया में, आपकी आवाज़ से इस दुनिया निराली सी लगती है. क्या बात है ना. एंड हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. इट्स टाइम फॉर अनीसा जीज शो. सो गिव हर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल बी विद यू सून. फिर मिलेंगे. बाय.
1: Like a Radio 90s. Like a Radio Punjabi. Like a Gold 2. Now available on the Like a Radio mobile app and Alexa.

0: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम, इनकार का आलम कभी इकरार का आलम, वो पहली मुलाकात में रंगीन इशारे, वो पहली मुलाकात में रंगीन इशारे, फिर बातों ही बातों में वो तकरार का आलम, कब आए थे वो कब गए कुछ याद नहीं है, कब आए थे वो कब आए थे वो कब गए कुछ याद नहीं है, आंखों में बसा है वही दीदार का आलम, और हमारी भी आंखों में बसा है सैटरडे का आलम। थैंक गॉड इट्स सैटरडे टुमारो। देखा, मैं इतनी मतलब आपसे मोहब्बत करती हूँ कि आपसे जुदा होने का तसव्वुर मुझे ये कहने ही नहीं देता कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे टुडे। कैसे हैं आप? बड़े मज़े में हैं और आज बड़े मूड में मकबूल साहब। एक आप ही है ना, एक अलहदा क्यू में लग जाएंगे बस, समझ है ना मेरी बात? समझ तो गई ही होंगे, अकलमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। गीतों में क्या कॉमन है बहुत सारे लोग ऑलरेडी बूझ चुके हैं, आपने कभी नहीं ट्राई किया तो आज बूझने की कोशिश करें ना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लीजिए आपको बता देते हैं दोस्तों कि £1 in British sterling today can get you up to 126.4 Indian rupees. तो याद रहे, एक्सचेंज कीजिएगा इन ब्रांच में ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मनु जी जीत गए हैं, राजा बन गए हैं। जबकि हम उन्हें मतलब मनु जी का नाम आता है तो जहन में सिर्फ राजा ही आता है, क्योंकि बहुत नहीं मतलब मेरा ख्याल है तकरीबन हर बार वही राजा बनते रहे हैं। अभी थोड़े दिनों से कुछ परफॉर्मेंस उनकी ख़राब हो गई थी, लेकिन बैक इन फॉर्म। Thank you. You are the Raja of the Hour, Manuji.
1: This is Anisa Nasir with the Big Show. This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15 5-10 વર્ષના બાળકોને £5 અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ £100 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે બેસ્ટ બેસ્ટ
3: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી
4: સાંભળે કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ
5: એટલે
3: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
6: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
3: તારી મારી દોસ્તી Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi, Mitrata, in cinemas now. UK release details mate, Instagram par follow karo Bakrania Media.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
8: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
9: Lights on, shutters up, staff ready.
8: But today's customers don't start on the high street.
9: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
8: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
9: They walk into your competitors.
8: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
9: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
11: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
12: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
13: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
14: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
17: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
18: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
19: Leica Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Cool aur online suno leicacool.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Wo chaand chehre, wo behki baatein. वो चांद चेहरे वो बहकी बातें सुलगते दिन थे महकती रातें वो छोटे छोटे से कागज़ों पर मोहब्बतों के पयाम लिखना कभी किताबों में फूल रखना कभी दरख्तों पे नाम लिखना हमें भी है याद आज तक वो नज़र से हरफे सलाम लिखना
1: ये है
3: लाइका गोल्ड
2: और ये है अनीसा नासिर आपको बता रही है कि फाइनल फ्यू डेज टू गो टू दिवाली स्टोरी जो आपके लिए लेकर आए हैं सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क इट टेक्स प्लेस एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन संडे 27 सितंबर डोर्स ओपन एट 4:30 PM विद अ स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM टिकट्स अवेलेबल एट diwalistory.com
0: Feel Good Classics with Anisa Nasir.
4: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: सजा नसीब ने दे दी नज़र मिलाने की, सजा नसीब ने दे दी नज़र मिलाने की, के शाख ही न रही मेरे आशियाने की। खिजां बहार में आई है हसरतें लेकर, रहेंगी याद हमें करवटें जमाने की। गिला फलक से नहीं उसकी बेवफाई का, गिला फलक से नहीं उसकी बेवफाई का, हंसा हंसा के है आदत उसे रुलाने की। सजा नसीब ने दे दी नजर मिलाने की।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta 366.8 Pakistani rupees, 126.9 Indian rupees, 84.2 Afghani, 162.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: और भी आइए अब उन नामों को मेंशन करते हैं जो बड़ी बेचैनी से कभी सज्जे थे कभी खब्बे, यानी कभी राइट और कभी लेफ्ट घूम रहे हैं कि अरे ये अनीसा भी ना इधर उधर की बातें कर रही है, हमारे नाम क्यों नहीं ले रही। लो जी ये जमजम लेते हैं आपके नाम। मनु जी यू आर द राज ऑफ द आवर। मिसेस के ताहिर जी, अंजुम जी, उमर जी दुबई से। उमर जी कहते हैं मैं तो सोच रहा था आज सबसे पहला जवाब मेरा ही होगा। कहते हैं कि आपका दूसरा गीत शुरू होने से पहले मैंने जवाब दे दिया था। मैं आपको बताऊं उमर जी, आप यकीन करें अभी गीत के चार बोल भी पूरे नहीं होते कि मुझे चार पांच मैसेजेस पहुंच जाते हैं। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं, अब इन लोगों से ज़्यादा तेज़ हो जाओ थोड़े से आप। वैसे माशाल्लाह से सभी राजाज हैं सभी रानियाँ हैं, ये बस एक दो सेकेंड का फ़र्क ही होता है। तो मनु जी, मिसेस के, ताहिर जी, अंजुम जी, हमारे बहुत प्यारे उमर जी, चौधरी फरीद अहमद जी, संध्या भावसर जी, नौशीन खान जी, शकीला नेडा जी, कुलबीर सिंह जी, प्रमोद जी, रानी जी सलाव से, पंडित सुधीर शर्मा जी, दीपक वोरा जी, बड़े दिनों के बाद आपने मैसेज भिजवाया है, ज़रा ध्यान कर लें मैं सब नोट कर रही हूँ, वीना जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, विजय गुडोरी जी, दीनी जी, अमित पटेल जी, मीनाक्षी जी, तोची जी, उल्लास जी, फरजाना जी, मंजीत संगर जी। मंजीत संगर जी ना थोड़ी सी चलाकी करती हैं, जब इनका अपना जवाब गलत हो जाता है ना तो फिर अपने उनको कहती हैं आप ना मुझे मेरा जवाब गलत हो गया है, आप ना आप ये लिख कर भिजवाएं। क्या बात है, चलाकियाँ ख़त्म ने थोड़े थे। लेकिन भाई देखो अकल इस्तेमाल करते हैं लोग और करनी भी चाहिए, क्यों। मंजीत सिंह जी आज तो, मंजीत संगर जी आज तो आपका ऑलरेडी अपना ही जवाब सही है। रोहित जी, नीलेश जी, पॉल मसीह जी, गीता हर्षद जोशी जी, तारिक राहील जी, अरुणा शाह जी, शगुफ्ता जी, दिनेश पोपड़ जी, वेल डन। और संध्या भावसर जी आप ये जो खानों की तस्वीरें भिजवा रही ना आज मुझे नहीं इम्प्रेस कर सकती, आज मैंने रज के खाना खाया है, दोस्त के यहाँ गई थी ब्रंच के लिए, उफ क्या बताऊँ मैं, बताऊँगी एक्चुअली बताऊँगी क्या क्या खाया, लेकिन आगे चल के।
1: Biggest Indian and Pakistani classics with Anisa Nasir.
0: एक दो चीज़ें अभी बता दूँ, पापड़ी चाट, पैटीज, चिकन, दही बड़े, एवरीथिंग होममेड।

याद कॉमन रहा गीतों में। दर्शन जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में यही होता है कि गीतों में क्या कॉमन है। बेहद शुक्रिया हिस्सा लेने के लिए, आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, बहुत अच्छा लगा। एक अधूरी सी मुलाकात लिए फिरते हैं, एक अधूरी सी मुलाकात लिए फिरते हैं, और आज तक दिल में कोई बात लिए फिरते हैं।

जाने किस मोड़ पे भूल आए हैं खुद को, लेकिन साथ एक याद की बारात लिए फिरते हैं। गुड इवनिंग, याद पर गीत उम्मीद करती हूँ भाई होंगे, पसंद आए होंगे। प्रतिभा जी कोई गल नहीं, दो चार चिड़गें खानियां पैनियां खा लांगे। साथ निभाइएगा 10 बजे तक। थैंक गॉड इट्स सैटरडे टुमारो। हा हा हा।

0: मैं तेरी समत कई रास्तों से आया हूँ, सो जानता हूँ ज्यादा खराब कौन सा है। किसी ने शाख पे इस तरह होंठ रखे हैं, कोई पता नहीं चलता गुलाब कौन सा है। वो एक सवाल जो तुमसे कभी नहीं पूछा, तुम्हें भी इल्म है उसका जवाब कौन सा है। ये रोज वक्ते मुकर्रर पे खुलने वाली आंख लिहाज ही नहीं करती कि ख्वाब कौन सा है। ख्वाब तो पूरा देख लें यार। बहुत ही खूबसूरत सा इंतखाब हमें भिजवाया जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब ने, और मैंने मौके की नज़ाकत देखते हुए झट से इसे शामिल कर लिया, वरना फिर ये टाइम के मोहताज जब हम हो जाते हैं ना तो टाइम मिलकर ही नहीं देता। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत, खैर मकदम जी आया नो। प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल रहेगा उल्टा पुल्टा भी और उसके साथ साथ पंजाबी तड़का भी।
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 126.4 Indian rupees. Aur yaad rahe to exchange in branch online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Aur lijiye bhai, humne khane peene wali chand cheezon ka to zikr kiya jo hamari dost Naz ne hum sab ke तमाम में तैयार की थी खुद अपनी मेड के हाथों से। नहीं, वो अपना भी पूरा कंट्रीब्यूशन देती हैं उसमें सच्ची में। तो मज़े का चिकन था, पापड़ी चाट थी, पैटिस थे, दही बड़े थे, नूडल्स थे और भी बहुत कुछ था ऑनेस्टली। और ऐसा नहीं कि मैंने सभी कुछ खाया, लेकिन जितना भी खाया बहुत मज़े का और बहुत पेट भर कर खाया। लिहाजा आज मैं दुहाई नहीं दूंगी कि भूख लगी। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं कि आपको बताते हैं वो चंद अल्फाज जिनकी रोशनी में आपको बूझना है कि कौन सा गीत है। है ना जी, बेहद शुक्रिया आपके मैसेज का। आपने कहा तलत महमूद जी आपके बहुत फेवरेट हैं, तो बहुत शुक्रिया। गीत आपको पसंद आया, आपकी पसंद के मेयार पर खरा उतरा, तो आई एम रियली क्या कहते हैं आपके लिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरे चुने हुए गीत पसंद आते हैं। राइट, मिलकर रोते, हल्के होते, जिगर के धोते। मिलकर रोते, हल्के होते, जिगर के धोते, कौन सा गीत है?
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
1: Anissa Nasir. Live across Greater London with The Big Show. This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल Auto protected.
6: हमारी रक्षक है वो।
7: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
7: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन,
9: तो समझो ना।
7: The One, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia, in cinemas now. For UK release details, follow Bakrania Media on Instagram.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
11: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Aaj hi contact kijiyega Southall Travel ko on 0208-574-8410. Aur yaad rahe, Southall Travel is it all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: लीजिए, एक तो हम दोहरा देते हैं अल्फाज को, वैसे बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशें कामयाब हो रही हैं सिवाय फरजाना जी के। फरजाना जी का जवाब सही नहीं है, लेकिन थैंक्स फॉर ट्राइंग। तो आपको बता दें कि मिलकर रोते, हल्के होते, जिगर के धोते, कौन सा गीत है ये? और जहाँ तक सही जवाब भिजवाने वालों का ताल्लुक है, उनका जिक्र तो मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी, थोड़ा सस्पेंस बना रहने देते हैं। लेकिन वेलकम करते हैं, स्वागतम कहते हैं, जी आयानु कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पाकिस्तान से, कराची से जनाब सैयद राशिद अली जी को। उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा और बताया कि मैं कराची पाकिस्तान से हूँ। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। मधु जी और अशोक सोलंकी जी कहते हैं हम वैंकूवर में सुन रहे हैं आपको। आपने भी पहली बार मैसेज भिजवाया मुझे, सच्ची बताइएगा। वैसे मुझे नाम तो सुना सुना लग रहा है आपका, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने भिजवाया हो। देखो जी, फर्स्ट टाइम या टेंथ टाइम, आपका दिल से खैर मकदम है।
0: This is Anisa Nasir. On Like a Gold, Greater London.
2: और लीजिए एक पैगाम और आपके नाम कर देते हैं। कैच द ब्रांड न्यू गेम शो जिसका नाम है इंडिया के टॉप 1%, होस्टेड बाय अनिल कपूर, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार पे आता है। डाउनलोड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जानते हैं आपके जियो हॉटस्टार जो है ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: अरे ओ बेमुरव्वत, अरे ओ बेवफा, मेरे किसी लिसनर ने फरमाइश की थी इस गीत की, सुनवा नहीं पाई। आज मौका मिलते ही आपके लिए जो है सुनवाया। उम्मीद करती हूँ आप सुन रहे होंगे ये। और बात की, मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। कोशिश बहुत की कल्ब ने लेकिन नहीं हुआ, कोशिश बहुत की इस कमबख्त दिल ने लेकिन नहीं हुआ। रहना किसी का जीस्त में, रहना किसी का जीस्त में मुमकिन नहीं हुआ। कुछ दोस्त बस ख्याल में मेरे करीन रहे, कुछ ख्वाहिशों की रात रही, दिन नहीं हुआ। और आपको बता दें, इस पॉडकास्ट के बारे में बहुत ही स्पेशल है, मेरे लिए तो है भाई, बल्कि हम सभी के लिए है। इसे होस्ट किया है रूबी राजा और डोनी ब्रास्को ने, और टाइटल है राज बैदन 5 ईयर्स शोकेस। उसमें वो अपनी सारी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनका रोल ऑफ CEO और वन ऑफ द, आप तो जानते ही, ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क के वो हैं, और लाइका रेडियो नेटवर्क, और इसके जर्नी बिहाइंड द टाइटल। इसके लिए आपको आराम से बैठ कर इस एपिसोड को देखना पड़ेगा। 5 साल का शोकेस चंद मतलब थोड़े से मुख्तसर से टाइम में वो समेटने की, समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। लेकिन ज़रूर देखिएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आती हैं। जब भी कोई बड़ा रोल किसी को मिलता है तो ऑब्वियसली वो अपने चैलेंजेस के साथ आता है, तो उन चैलेंजेस को कैसे उन्होंने फेस किया। वी लव आवर बॉस एनीवेज एंड ही लव्स अस। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: Harrow, the wait is over. Prakhyat Spice Village have Harrow ma khuli gayu che. Sizzling mixed grills, signature masala fish, swadisht karahiyo ane tandoor ma thi nikrela garma garam fresh naan. Saathe sauthi mota vegetarian menus ma thi ek alag vegetarian kitchen ma tayyar. To family ane friends ne saathe laavo ane maano Spice Village no award winning swad. Avo 124 Dominion Parade, Station Road, Harrow. Spice Village Harrow, now open. Khawa, marwa ane celebrate karvanu tamaru navu sarnamu.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
8: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
9: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
11: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel Good Classics with Anisa Nasir.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: One British pound आज आपको दिला सकता है 126.9 Indian rupees, 84.3 Afghani, 366.9 Pakistani rupees, 162.9 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
0: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: The gold is currently trading at £104.14 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: और भी किसी की हैंड राइटिंग अगर समझ में ना आए तो एक कहावत है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा. तो यहाँ पर तो ये चक्कर भी नहीं है, टाइप करके मैसेजेस भिजवाए जाते हैं. जनाब सैयद राशिद अली जी, आपने जो करके मैसेज मुझे भिजवाया है वो मैं मतलब चला के इतनी हूँ कि मैंने बूझ लिया है, वरना कोई चांस नहीं थे. आई थिंक आप गीत सुनना चाहते हैं, जिंदगी जा छोड़ दे पीछा मेरा, आखिर मैं इंसान हूँ पत्थर तो नहीं. लेकिन कसम से मतलब मेरी जहानत या चलाकी चेक करने के लिए ना आप जरा अपना मैसेज गौर से पढ़िएगा तो सही, एक बार मेरे कहने पे प्लीज.
1: दिस इज लाइका गोल्ड नॉन स्टॉप क्लासिक्स
4: पंजाबी तड़का विद अनीसा.

लीजिए आज का पंजाबी तड़का भी यादों पर आ गया। कहते हैं जोर दिले ते चलदा नहीं इश्का तू ही टलदा नहीं, जोर दिले ते चलदा नहीं इश्का तू ही टलदा नहीं, तेरे जिहा ते तू ही है, तेरे नाल कोई रलदा नहीं, अपनी मर्जी करना है पार कोई मेरी गल दा नहीं, रकीबां ते हाथ रख्या है रब भी मेरे वल दा नहीं, कल ते उम्मीदां रखियां ने पता ते अगले पल दा नहीं, जोर दिले ते चलदा नहीं इश्का तू ही टलदा नहीं। फिल्म का नाम जानना चाहेंगे? मीदा वारदातिया। ये ना उस जमाने में पंजाबी फिल्मों के अजीबोगरीब नाम ही होते थे। अब नाम भी देखो ऐसा है कि बहुत सों को याद रह जाएगा और बहुत सों को नहीं याद रह जाएगा। मीदा वारदातिया लेकिन गीत इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा कि जीशान जी ने भी फौरन से पहले मैसेज भिजवाया। बेह

0: प्रतिभा जी के बाद फातिमा जी। फातिमा जी, आप भी बहुत नॉटी हो गए हो, बहुत अरसे के बाद आज आपने मुझे याद किया है। मैं सच्ची मतलब कहती कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बड़ा परेशान हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आज आपने याद तो किया। दिनेश पोपट जी, आपका भी जवाब सही है। कुलबीर सिंह जी, बल्ले बल्ले जी, जवाब सही है। उल्लास जी का भी जवाब सही है और तोची जी का भी जवाब सही है। अगर हमारी डेनवर वाली राणो जी सुन रही है तो वेरी बिग हैलो, सत श्री अकाल थानूं। तुसी अगले दिन भेजा सी मैसेज पर लेट हो गया सी बथेरा, तो मैं थोड़ा नाम मैंशन नहीं कर सकी। आई मिस योर मैसेजेस राणो जी। राणो, कदी कदार मैसेज भेज दिया कर कुड़िए।
1: This is a Nisa Nasir with the Big Show. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
3: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा।
3: शाम 7 बजे डोर्स ओपन।
4: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02284260678।
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: डाउनलोड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज। Nisa Nasir with the Big Show. Weeknights from

0: राजेंद्र सिंह कालरा जी और स्वीटी कालरा जी, बड़े प्यार से ये गीत आपके नाम आपकी नजर, और यही गीत विनी विनोद जी आपके भी नाम करती हूँ, उन सभी के नाम करती हूँ जिन्हें बहुत पसंद है। भारती जी हमारी दीदी अडवाणी थ्रू आउट द शो मेरा साथ निभाती हैं, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। भारती जी बेहद शुक्रिया आपके नाम भी करते हैं। नहीं कि अपना जमाना भी तो नहीं आया, हमें किसी से निभाना भी तो नहीं आया। जला के रख लिया हाथों के साथ दामन तक, तुम्हें चराग बुझाना भी तो नहीं आया। वो पूछता था मेरी आंख भीगने का सबब, वो पूछता था मेरी आंख भीगने का सबब। मुझे बहाना बनाना भी तो नहीं आया, वसीम देखना मुड़ मुड़ के वो उसी की तरफ। किसी को छोड़ के जाना भी तो नहीं आया। What a beautiful song, जहारा, one and only तलत महमूद जी। पता नहीं ये गीत सुनकर कुछ होता है, बल्कि काफी कुछ होता है। अब क्या है वो फीलिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मेरे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम, और एक रोमांटिक सा गीत हो जाए।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड।
0: और देखा जाए तो उस गीत में भी रोमांस कूट कूट कर भरा था। किसी के दुख समेट लेना, इससे ज्यादा बड़ी मोहब्बत, इससे ज्यादा बड़ा रोमांस कोई हो ही नहीं सकता। गुड इवनिंग।

0: मोस्ट लव्ड आवाजों में एक आवाज है यसुदास जी की, किसको पसंद नहीं आती, किसको नहीं भाती। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द फाइनल आवर। मैं नहीं कह रही, मेरे सुनने वाले कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सएप कह रहे हैं चॉइस मास्टर, मास्टर नहीं होता है बट साहब, आपको नहीं पता, मास्टर नहीं, मास्टर नहीं। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, चांद को छत पे बुला लूंगा, बड़े इशारे आ रहे हैं आपको। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, रात भर देखूंगा तुझको ही सितारा करके, तेरी जुल्फों की घटा छाएगी जब शाम ढले, दिल को बहलाऊंगा, दिल को बहलाऊंगा एक तेरा नजारा करके, तेरे कदमों की सदा आए तो दिल धड़केगा, जिंदगी जाऊंगा एक ख्वाब तुम्हारा करके, तू अगर साथ हो तो चांद भी फीका लगे, रात सज जाएगी बस तेरा सहारा करके।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 126.4 Indian rupees. Aur bhuliyega nahi ki exchange kijiyega in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और कुछ ही देर में आर्टिस्ट ऑफ द वीक यानी कि कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में आप एक गीत सुनेंगे, और आज का गीत जो है ना थोड़ा सा चीकी है और मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो चलिए सुनते कुछ ही देर में। गुड इवनिंग।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Need anything from Tesco? How about winning the best night in ever with one of 50 tech bundles worth £10,000? Spend £25 in-store or online with your club card to qualify. Tesco. Every little helps. UK and Isle of Man 18 plus only, club card required. Spend £25 on qualifying purchases in-store or online. Max one entry per day. T's and C's restrictions and exclusions apply.
1: This is Anissa Nasir with The Big Show. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
4: Oh, terrible weather.
3: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
5: See ya, good luck with the interview.
4: Thank you, bye.
3: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ, कोई पता चला?
7: गुरु गुरु,
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधू, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र।
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November. To book, call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
12: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
11: Southall Travel.
12: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
11: Southall Travel can take you there.
13: Southall Travel, at all protected.
14: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK North Holt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
5: हमारी रक्षा है वो।
9: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
15: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
9: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज नाउ। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
16: लाइक अ गोल लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
17: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: 1995 की फिल्म बॉम्बे से ये हमने गीत लिया था, जिसके बाकी सभी गीत आप लोग बड़े प्यार से सुनते हो। ये बहुत कम कम जो है सुना और सुनाया जाता है, और उनकी वर्सटैलिटी को दिखाने के लिए मैंने ये गीत जो है प्रोग्राम में शामिल किया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमने कभी सुना ही नहीं है, तो चलिए आज सुन तो लिया ना, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू लाइक अ गोल्ड। और आपको बता दें कि ये प्यारी सी जो आर्टिस्ट हैं आ रही हैं आपके लिए लाइव परफॉर्म करने के लिए दोस्तों। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं कविता कृष्णमूर्ति जी की, जो आपके लिए लाइव परफॉर्म करेंगी रॉयल अल्बर्ट हॉल में ऑन संडे 1 नवंबर को। आपके लिए सनातन इवेंट्स जो हैं वो लेकर आए हैं इस इवेंट्स को एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स जो हैं वेन्यू बॉक्स ऑफिस से मिल सकती हैं, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: कह देती हूँ, वैसे मेरा कहना नहीं बनता कि इस दिल के अलावा तेरा कहीं रहना नहीं बनता, और आपका भी बनता है कि वीकेंड पर भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे साथियों का साथ निभाए, जो आपके लिए बड़े प्यार से प्रोग्राम्स लेकर हाजिर रहते हैं पूरे नेटवर्क पर, एक से बढ़कर एक प्रेजेंटर वीकेंड पर आपका साथ निभाएगा। और अब हम तो जाएगा और मंडी को वापस आएगा। जहीर खान साहब, बेहद शुक्रिया, आई होप कि आपकी बकरियाँ डूइंग गुड टुडे। और मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट के बहुत ही प्यारे से चुने हुए म्यूज़िक का लुत्फ उठाइएगा। और यहाँ पर अशोक सोलंकी जी, आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तेज सोलंकी और सोनल चौहान को, जो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं ये सभी के सभी नाम जो आपने भिजवाए हैं प्यार करने वालों के, फैमिली के, दोस्तों के, उन सब के नाम मेंशन करके उनको कंग्रेचुलेशंस कह सकती, लेकिन यहाँ पर हम सब की तरफ से तेज सोलंकी और सोनल चौहान जी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है। एज आई सेड, रब सोने ने चाहा तो मैं मंडे शाम 7 बजे फिर हाजिर हो जाऊंगी। वीकेंड पर जो भी करें रेडियो को साथ रखिएगा, 24 घंटे सातों दिन का साथ रहता है, और एक पल के लिए भी हम आपको अकेला नहीं छोड़ते। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क। अनीसा नासिर लाइव अक्रॉस ग्रेटर लंदन विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search

0: Songs with the Royal Philharmonic Concert Orchestra. Get your tickets from royalalberthall.com and cinethanevents.org. Brought to you by Cinethan Events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
2: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
3: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
2: शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो।